गावन तुदन पवन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदन चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदन ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदन इंदर इंदर आसन बैठे देवतया दर नाले गावन तुदन सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदन साध बिचारे गावन तुदन जति सती संतोखी गावन तुदन वीर करारे गावन तुदन पंडित पढ़न रखी सूर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदन मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदन जोद महाबल सूरा गावन तुदन खाणी चारे गावन तुदन खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदन गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर के ते तुदनो

तिल वडे आई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखण पाहे वड्डा ना होवे घाट ना जाए।

साधु। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको

चित्त जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाणा, हर त्यावह तुद जी, से जान जुग मैं सुखवासी, से मुकत पए, जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाह।

आज संग्रह पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जु करे हो रक्षा। राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दोष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा।

कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब।

जेती बरनत पेन पेन तोहे तेती तुमरा लखा न जाई पसारा केह बेद सजा प्रथम संसारा।

तज किनी उत पूज खान बहुर राज दिनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा।

साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया।

तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सची बाणी संत

संतान गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह उस परमेश्वर की निरंकार की उस्तुत पे करते हैं कि मालक मैं तेरे केड़े केड़े गुणा की व्याख्यान कर सकूं, तेरे अंते इन्ने बेअंत हैं, ये मेरी एक रसना है ते एक रसना दे नाल मैं तेरी उस्तत तेरी वड्याई किस तरह करा, मैं के तक गावा रहा। एक शब्द सानू जुगती दिती गई है कि जद भी गुरु दे कोल बैठना है ना ते इंज रस्ता उस परमेश्वर दी वड्याई उस्तत करनी है। जिस वेले उस वेले असी उसकी उस्तत करांगे वड्याई करांगे ना ते साडे अवगुण भी सानू नजर आणगे है कि परमेश्वर दे अंदर ते इन्ने बेअंत गुण हन ते असी ते अवगुणा ते परे हाँ। ते इस तरह उस्तत करदे करदे एक समा उस आ जाएगा कि परमेश्वर दे गुण साडे अंदर आने शुरू हो जाणगे। यही मकसद हुंदा है गुरु दे कोल बैठण दा। सो आओ कीर्तन की समाप्ति दसने के बाद बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई सकत्र सिंह जी आप जी ने कथा राय निहाल कर लगे ने। आप जी ने बड़े प्यार सत्कार नाल बैठ के कथा नु सुनन करन दी कृपालता करनी जी। फतेह बुलाओ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी।

दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराहे तिहा हों करी वखियान। बेसमार था अगंत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास भोलै। वाहे गुरु जी सत नाम सलोक

गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो प्रभु को मिलवोच है खोज, राज करेगा खालसा, ख्वार हुए सब मिलेंगे।

मूर्ख की कितक बात है, कोट पराधी तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया

बोलो जी, बोलना जी। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह, श्री भगवत जी सहाय, वार श्री भगवत जी की पातशाह दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय, अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याय। जे विखे शब्द पुजाए, तेग बहादुर सिमर घर नौ निदावे, ताए सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत, शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ, दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। निमाणिया दे माण, निताणिया दे तार, नियोटिया दी ओट, गुरु गरीब निवाज, धन धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी, शब्द गुरु दाता, आप जी दे मुबारक चरना कमला विच अरदास बेनती है। आप जी दे भाणे अंदर चार पहर दिन सुखां दा बतीत होया, सतगुरु जी अमृत वेले तो इस वेले तक आप जिया ने खुले दर्शन दीदार बख्श के निहाल कीता, रात दे दीवाना दी संपूर्णता, आप जी दी सेवा संभाल, सोहला साहब जी दी बाणी दा जाप करदे आ, सेवा करदे आ, बेअंत फुल्ला हो गई बख्श लेना, अपने दर दे सेवकां नूं सदा साज के निवाज के रखना, सारियां संगतां दियां दिल फुल भेटावां दर परवान, सब दियां झोलियां खुशियां बरकतां रहमतां नाल भर के भेजो, सतगुरु जी आग्या बख्शिश करो, निज स्थान सचखंड पलंग ते विराजमान हो महाराज जी, रहण आइए सुखमई बतीत करायो, अमृत वेले फिर दर्शन बख्शियो जी, सुख होवे नाम चितावे नानक ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेवय नमः। अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावों, कल कलेस तन माहे मिटावों।

की महिमा गनी न आवे, कांकी एकै दर्श तुहारु, नानकुन संग मोहे उदारु, सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जब दसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै, प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ कै सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, से सिमरह जिन आप सिमराए, नानक ताकै लाग उपाए, प्रभ कै सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहि समाए, प्रभ जी बसै साथ की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते, प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावै, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरह तिन अनद कनेरे, प्रभ को सिमरह बसह हर नेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह समानी, प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार, सिमरह से जन जिन को प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगला कारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन।

चांद गुबारा हर का नाम संगु जियारा जह पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तै नाल पछानू जय महा प्यान तप्त बहु कामु जय हर के नाम की तुम ऊपर छामु जा त्रिका मन तुझ आकर खै तह नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरत नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उदरे जन कूट हर जस करत संत दिन रात हर हर औकद साधक मात।

हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का पर न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन कुआ प्रभ दीना, हर हर जन कै उठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग विट भागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरति, पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमूल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, घट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग वन मध्य फिरया, अनेक प्रकार की ये बहु जतना, पुण्य दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्तने करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपि सर थीवे, अगन माय उमत प्राण, कनिकस्व है वर भूम दान, न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजमत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, ताओ पी होमे मैल न जावे, हर के नाम समसर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही, मन कामना तीर दे छुट्टै, गर्व गुमान मन ते उठै, सोच करै दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबू न बिख्या टरै, जल तो वै बहु दे अनीत, शुद्ध कावे काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहमूच, बहुत सियाण जम का भव व्यापै, अनेक जतन कर त्रसन्ना त्रापै, भेख अनेक अग्नि बुझै, कोट उपाव दरगह नि सिजै, झूठ सुनायु पयाल, मुहि व्यापै माया जाल, अवर करतू सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सदगावै, जे को अपनी शोभा लोरै, सा संगे होमै छूरै, जे को जन मरण ते डरै, साजना की सरनी परै, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गणिया सब ते ऊंचा, जाका मनो सगल किरीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मने अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल श्रेष्ठ साजना, सुख दुख जन समदृष्टेता, नानक पाप नहीं लेपा, निर्धन को धन।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल से कवन दृष्टानी जिंतु सासुआर सिगारिया गर्भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जुबन भोजन सुख सूद बिरद पया उपर साख सैन मुख पयाओ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बुझै बख्श ले हो तो नानक सीजै जे प्रसाद धारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संघसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पव कमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसे त्यागवर संरचना ऐसे दोख मुड़ंद व्यापे नान काडले रूप व्यापे आदंत जो राखन हार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव नित पावै तास्यो मूड़ा मन नहिलावै जो ठाकुर सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसे बिसारै मुग्ध अजान सदा सदा भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्या कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाय तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द प्रीत भस्म संग होए अंध कूप में पतत बिकराल नानक काढ़ ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पे कंतर मलमाया छप सुनाई कछ करे छपाया बाहर

सुमात सोन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गहले हो ऊड़ निभावे, कहा बुझारत बुझे डूरा, निष्कहिये तो समझे पूरा, कहा विष्ण पद गावे गुंग, जतन करे तो पी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तू हाँ उस गवन, करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे, संग सहाय सुहावे न चीत, जो बैराई ता स्यो प्रीत, बलुआ के गृह पीतर बसे, अंध केल माया रंग रसे, दृढ़ कर्मा न मने प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लेहु अपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, उच्चे ते उच्चा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते हुए स्वाज्ञाकारी, तुमरी गातमित तुम ही जानी, नानक दास दा कुर्बानी, श्लोक देन हार प्रभ छूट कै लागह आन सुवाई, नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाए अष्टपदी, दस वस्तु ले पाछ पावे, एक वस्त कारण बिकोट गवावे, एक भी न दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कहो कहा करे, जिस ठाकुर से ना ही चारा, ताकू की जय सद नमस्कारा, जाके मन लागा परम मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा, जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगंत साव अपनी देरास, खात पीत बरतन दुलास, अपनी अमान कछ बहुर साहु ले, अज्ञानी मन रोष करे, अपनी प्रति ताप ही होवे, बहुर उसका विश्वास न होवे, जिसकी वस्त से आज्ञा राखे, प्रभु की आज्ञा मन मत है, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, अनिक पांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिर की छाया स्यों रंग लावे, ओ बिन से ओ मन पछतावे, जो दिशे सो चालन हार, लपट रहे होते अंध अंधार, बटाऊ स्यों जो लावे नेहे, ताको हाथ नया वे के हे, मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नान काप ले लाई, मिथ्या तान तान कुटम सुबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राजोवन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अस्तु वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता, मिथ्या त्रोम अभिमान, मिथ्या पशु पर कर्त गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है, मिथ्या तनी पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सफय, सफल दे नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की आर जा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुकावता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाई, मेघ बिना ज्यो खेती जाए, गोबिंद भजन बिन वृते सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम, धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कै बल बल जाओ, रहत अवर कछवर कमावत, मनी प्रीत मुखो गंड लावत, जानन हार प्रभु पर बीन, बाहर भेख न काहू पीन, अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन मै मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार, जो तुम पानी तिन प्रभ जाता, नानक उनजन चरण पराता, करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया या पहमाने, आप है आप करत नबीरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नीरा, उपाव सियान सगल ते रहत, सबक जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान तनंतर रह सुमाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी, श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सुजाए अहंग मेव,
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵੈ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਣ ਜੋਗ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ ਤਿਸੈ ਧਿਆ ਕਤਵਰ ਲੁਭਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਸੁਵਿਜੈ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵਿਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਰੁ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪ ਦਰ ਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪਤ ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੂ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਰਿਵਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਰਉਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਭੁੱਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ ਰਾਖ ਪੁਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਨਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਹਿ ਪੁੰਨ ਬਹੁਦਾਨ ਮਨਾਟ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਧ ਸਾਧ ਚਿਤਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਉ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤਰ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵ ਹੈ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ ਜੇ

ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਬਹੁ ਧਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਗੋਚਰ ਲਹਿ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਵਸੈ ਥਾਨ ਉਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਜੜੈ ਸਭ ਧਰਮੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਇ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੁੰਬ ਨਿਸ਼ਟਾਰੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨੁ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੁਖਤ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਛੁਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਤਾ ਜਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਮਿਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜਿਤਾ ਸੁਨੈ ਤਿਤਾ ਬਖਿਆਨੈ ਸਾਧਕ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧਕ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਸੁਧਾ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੇਦ ਨ ਭਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਕਿਸ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲਪਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰ ਜੇਕ ਜਿਉ ਬਸੁਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹੈ ਗੁਨਾਉ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਧਾਰੂ ਪਰ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮ ਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰਿਆਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਮਾਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੁਭਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਕੈ ਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭਸੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ਼ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਦਾਖਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੰਥ ਨ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ
ब्रह्म ज्ञानी है नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उरता रह जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानको अपर सगल निस्तार है। अष्टपति मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पेख है नेत्र, साध के टहल संसंग हेत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरै, मन की बासना मन ते डरै, इंद्री जित पंच दोग ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा वर्ष, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते विभिन्न, कर्म करत हो वै नहीं कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक को वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सासंग पापा मलको वै, तिस भगवती की मत उत्तम हुवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तनेर पै विष्ण परीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म में सोतै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित का उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद प्राण सिमृत बूझै मूल, सुख मैं जानै स्थूल, चौवर्ण को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवर्ण में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासंग पावै जन कोए, कर कृपांतर उतारै, पस प्रेत मुक्त पात्र को तारै, सर्व रूप का उकद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सो जी परै, सगल संगा तुम उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सो कहावै, तैसा हर्क तैसा उसोग, सदानंद तै नहीं बियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा बिमानु, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक को पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखै तैसा तिन्नाओ, आपे करण करावण जोग, प्रभावै सोई पुन होग, पसरिउ आप हंत तरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भए निहाल। श्लोक उस्तद करै अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहु विधनिक प्रकार। अष्टपदि कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन ब्रह्म उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नान करते कंत न पाव है, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपे गातम निकोर, कई कोट पर दर्प को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट पर देश परमाहे, जिज जिज लाव तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बृख निपजाए, कई कोट पवन पानी वै संतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नखेतर, कई कोट देवदान इंद्र सिर छतर, सगल समग्री अपने सुतार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमृत अर्थ शास्त्र,
कई कोट की रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट की चिरजीवे, कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जखि नर पिशाच, कई कोट भूत परे सुकर मिर्गा, सब ते नेर सबूते दूर, नानका अपलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नर सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीव मर, कई कोट बोजुनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल थक पाहे, कई कोट कीतनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जय जय पाणा तय तय राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खो जनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिन को मिल्यो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होया सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट हुए अवतार, कई जूत किन्नो विस्तार, कई बार पसरयो पासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट किन्ने बपात, प्रभ ते हुए प्रमाय समाता, कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हुवता तम प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नित्रे, कई कोड नाम रस पीव है, अमर पै सत सद ही जीव है, कई कोड नाम गुण गावे, तुमरा सुख सह सुमावे, अपने जन को साथ साथ सुमारी, नानक कोय परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रवेक है, दूसर नाही कोए, नान किस बलिहार ने, जल थल मही अल सोए, अष्टपदी करण करावन करने जोग, जो तिस पावे सोई होग, किन में तापो तापन हारा, अंत ने किच पारा वारा, हुक्मे धार धार रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रहा समाई, प्रभावे मानुख गत पावे, प्रभावे ता पात्र त्रावे, प्रभावे बिन सास तेरा कै, प्रभावे ता हर गुण पाखे, प्रभावे ता पत तुधारे, आप करे अपन विचार, दुहा सुरियां काप स्वामी, खेल बिकसे अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवरनाया वै, कहो मानुक थे क्या हुया वै, जो तिस पावे सोई करावे, इसके हाथ होए ता सब किच ले, जो तिस पावे सोई करे, अनजानत भिखिया मैं रचे, जे जानता अपना बचे, पर मैं भूला दह दिस्तावे, निमक माय चार कुंठ फिर आवे, कर कृपा जिस अपनी भग दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे, जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा न गने जगदीश, जीव पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई, इसका वरना ही सहात, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावे सोई फुन थियो, कबू ऊच नीच में बसे, कबू सोग हर खरंग हसे, कबू निंद चिंद व्यवहार, कबू बकास भयाल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिलावनहार, कबू नृत्य करे बहुपात, कबू सोए रहे दिन रात, कबू मां क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो तरवार, कबू हुए बह बड़ राजा, कबू पेकारी नीच का साजा, कबू अपकीरत में आवे, कबू पला पला कहावे, ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे, गुरु प्रसाद नानक सच कहे, कबू हुए पंडित करे बख्यान, कबू मून धारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबू पीट हस्त पतंग हुए जिया, निक जुन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तिवै निचावे, जो तिस पावे सोई हुए, नानक दूचा वर न कोए, कबू सास संगत पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन अमृत एक रंग, सदा भसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान, श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आया पनिवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतराज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाने में जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आपस को करवंत कहावे, जन्म मरै बोजुन परमावे, धन भूम का जो करे गुमान,
सुमूरख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानकी है मुक्ता गै सुख पावे धनवंता होय कर गर्भावे तिन समान कर संग न जावे बोलस कर मान खूपर करे आस पल भीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान ओट कर्म करे हो तारी श्रम पावे सगले बिरतारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगह को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेंजा कामन हुए कव नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जाबे जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता जब तार को बैरी मीत तब लग नेचल ना ही चीत जब लग मुंह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लग उठता वै तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनिक भोग विख्या के करे न तृप्ता वै खप खप मरे बिना संतोख नहीं कूरा जय सुपन मनोरथ वृथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख हुए बड़भागी किसे प्राप्त हुए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप प्रभ सोए जो किचकिनु स्वप्न रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझ देखे करे बबे का पै अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक सद ही रहा सुमाए आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछु सकाउ करने हार उसते पिन कहो किछु हुए थान तनंतर कै सोए अपने चलताव करने हार कौत करे रंग आपार मन मया मन अपने माहि नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वकियानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने विरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सूजन उदरन हार संत के निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन हार जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखै न कोए संत कै दुखन थान प्रस्त हुए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जो लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिग जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को नाए नान संत भावे तो भीगत पाए संत का निंदक मात ताई संत का निंदक किन टिकन न पाई संत का निंदक मह त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखी आर दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत के निंदा दुख में दुख नानक संत पावे तो उसका पी हुए मोक संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का निमित्त संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्याग संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा भिकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख न सुख ते टरे संत के दुखी को ना ही ठाउ नानक संत पावे तां ले मिलाए संत का दुखी अदबीज ते टूटे संत का दुखी कितै काज न पहुंचे संत के दुखी को रण प्रभाइये संत का दुखी उजड़ पाइये संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ नाहे अपन भी जापे ही काहे संत के दुखी कवर न राखन हार नानक संत पावे तां लै उबार संत का दुखियों बिललाए ज्यो जल विहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पाव केंद्र नहीं त्रापै संत का दुखी छुट्टै केला ज्यो बुआड़ तिलकेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत
संत का दुखी सद मिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक ज्योति भावे सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है संत के दुखी की पूजे न आसा संत का दुखी उठचले निराशा संत का दुख न तृष्ट कोई जैसा भाव है तैसा कोई हुए पया किरत न मिटे कोई नानक जाने सच्चा सोए सब कट तिसके करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्त करो दिन रात सत्या हो श्वास गिरा सब कछ वरता तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना के लाभ करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करे दिस अपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से श्लोक तजो सियान सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरन भो जाय इष्ट पदी मानुक की टेक वृत्ति सब जान देवन कोई कह भगवान जिसका दिया रह गाय बौर न तृष्ण लागे आये मार रखे कुआ मानु कै किसना ही हाथ इसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रखंड परोए सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिघन न लागे कोए उस्त मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसनामृत पीयु सदा सुहेला कर लह जियु नैनो पेख ठाकुर का रंग सात संग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपिया हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानकू जिल मत्था बड़भागी ते जन जग माही सदा सदार के गुण गाये राम नाम जो करे विचार से तन मंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक एक पचाने तुतकी सो जी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जान्या गुरु प्रसाद अपन आप सुजय तिसकी जानो तृष्णा बुझे सा संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अंदिन कीर्तन केवल बख्याल गृष्ट मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटी है जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर ब्रह्मंच ते आवे सो संत सुहेला नहीं दुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोधत सोधत सोधत सीजिया गुरु प्रसाद तत्सबूजिया जब देखो तब सब किछ मूल नानक सो सुखम सोय स्थूल न कि जन्मे न किछ मरे अपन चलताप ही करे आवन जावन दृष्टन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल में आप अनेक युग त्रस्ताप ताप बिना सीना ही किच कांड धारण तारे हो ब्रह्मांड अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभु जाता सो सुबावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु का सब जपै निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करह बड़ भागै नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो किछ करै सो प्रभु कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाय हुवै सो हुए करनै हर पछाणै सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस त्यो बजे तिस माय समाय सुख निदान नु बनयाय।

पदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरता कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अवनाशी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न हुए जिसो प्राणी लुचै कोए तिस बिन नाही तेरा किछ काम गत नानक जपे कर नाम रूपवंत होए नाही मुह है प्रभ की जो सगल कट सु है तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किस तिसका दिया दर्ब है अत सूरा जे को कहा वह प्रभ की कला बिना कहता है जे को हुए बह दातार तिस देन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग नानक सोजन सदा अरोग ज्यो मंदिर को थम मैं थमन त्यों गुर का शब्द मन अस्थमन ज्यो पाखान आप चढ़तर है प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन हुए विगास ज्यो माओ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बांछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिराया जान कौन बसताई तेरे संग लपट रहे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद सिद्धि कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज मान लेहु मन भूल राम नाम हृदय में तूल लाद के संत संचाल अवर त्याग बिखिया जंजाल तन तन कह सब कोय भूखु जल हर दर गै सोए हो वापार विरला वापार है नानक ताकै सद बलिहार है चरण साध के तुय तुय पियो अर प्रसाद को अपना जियो साध के धूर करो इस नान साध उपर जाइये कुरबान साध सेवा विट भागी पाइये साध संघार कीर्तन गाइये अनेक विघन ते साधु राखै हर गुण गाय अमृत रस चाखै उठ गई संतै दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवाल नहार भूखे को देवता दार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस तिसका उकरण है जोग तिस बिंदु सर हुआ न हो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थी आ जाके मन गुर की प्रतीत तिस जने आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए त्यो लोए जाके हृदय को हुए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुखैत सच हृदय सच्चा आकार सच वर्ता सच्चा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन।

सु हुए सुप्रसन्न अष्टपदी। अविनाशी प्रभ मन में राख, मानो की तू प्री त्याग। तिस्ते परे नाही किछ कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर कही सजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बसंत। सा तेरे की चरनी पाओ, नानक के मन ए नाओ। मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कृपाया सोई हो। हरन परन जा का नेत्र पूर, जिसका मंत्र न जाने हो। अंधरू मंगल सर जाके, सर्व शोक सुनिए करता के। राज में राज योग में जोगी, ताप में विसर कृष्ण में भोगी। त्याई त्याई भगते सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन्या।

ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेह करेक रंग नाना बिलकीनो विस्तार प्रणसी एकंकार नाना चलत करे खनवाए पूर्व सौठाए नाना बिलकर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नान करनाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद प्राण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरियासा पवन नाम के संग उजरे सुन सरुण कर कृपा इस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सोजन गस पाए अरूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतू सत सत जा की बाणी सात पुरख सा महेश बाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए ते सपड़े सत नाम प्रभ का सगदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश साते जन जा गिर प्रवेश सत निर पूजे जे कोए नाम जब तायगत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मितगत जिसकी सिट सो करने हार अवर नभूल करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक ज्योतिष पावै सो वर्तिया बिस्मण बिस्म पै बिस्माद जिन बुझिया ते साया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर के वचन पदार्थ लय ओए दाते दो काटन हार जा कै संग अरे संसार जन का सेवक सोवड पाकी जन के संग एक लगी गुण गोविंद कीर्तन गावे गुर प्रसाद नानक पल पावे श्लोक आद सच जगाद सच है पे सच नानकोसी पै सच अष्टपदी चरण सत सत पर सुनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखण हार नाम सत सत त्यावनार आप सत सा सब तारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभगता सुरत सत साजा सुनता बूझण हार को सा सब हुए नानक सत सत प्रसोए सात स्वरूप हृदय जन मान्या कर्ण कराऊं तेन मूल पछाणिया जा के हृदय विश्वास प्रवाया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपो होए बसाना जिस ते उजिया तिस माए समाना बस्त मैले बस्त गड़ाई ताको पहनना कहना जाई बूझे बूझण हार विवेक नारायण बड़े नारकेक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का

सेव सदा पुजारी ठाकर के सेवक है मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्भरीत ठाकर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम किरंग सेवक को प्रभु पालनहारा सेवक की राखे नकारा सो सेवक जय दया प्रभु तारे नान सो सेवक सास मारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाव जपाई अपने सेवक की आपत रखे ताकि गत में कोई न लगे प्रभु के सेवक को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे जो पर अपनी सेवा लाया नान सो सेवक वह लिख पाया नेकी कीरी मैं कर रखे पासम करे लश्कर कोट लाके जिसका साथ न काटते आप ताको राख देख रात मार जतन करत बो पात जिसके करतो बिरते जात मारे न रखे और न कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे प्राणी जप नान रख राणी बारंबार बार प्रव जपिए अमृत ए मंत्र जपी नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस कवर नाई दिखाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख और नाम का संग नाम रस जो जा तृप्ताने मन तन नामे नाम स्माने उठ बैठ सोवत नाम कहो नानक जन के सरकाम बोलो जस दीपा दे रात प्रभु अपने जन की नींदात करे भगत आत्म कह जाए प्रभु अपने सिउ रहे समाए जो हुआ हो सो जाने प्रभु अपने का हुक्म पिछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभु से हजूरे कहो नानक सही जन पूरे मन मेरे तिन की उठ ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पछाता सोजन सर्व थोक का दाता तिस की शरण सर्व सुख पावे तिस के दर्श सा पाप मिटावे अवर सियाण सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवण जान ओ भी तेरा नानक तिस जन के उजो सद पैरा श्लोक सात पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाओ तिस कै संग सिख उद्धरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुरबचनी हर नाम चरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हलत पल सुवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै गुर कै ग्रह सेवक जो रहै गुर की आज्ञा मन में सह आप उसको कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सद ध्यावै मन बिचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कार्ज रास
सेवा करत हुए नेह कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेव गुर की मत ले। बीस बिस्वे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनिक बार गुर कौ बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ परम। सह सियानप लया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन करन आघाने मन संतोखा तुम पतियाने। पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पे कह हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पाव है तिस लय मिलाए। जिहबा एक उस्त तन एक सतपुरख पूर्ण भवेक। काहू बोल न पोचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई। अनिक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुरे अपने नानक जिस पर साध ऐसा प्रभ जपने। यो हरस पावै जन कुए अमृत पीवै अमर सोहुए। उस पुर का नाही कदे विनाश जा कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले सच उपते सेवक को दे। मुह माया कै संग न ले मन में रखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे नानक परमु दुख तहते नासे। तप्त माहे ठाड वरताई आनंद भया दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे। पाओ चुका निरपाओ हुए बसे सगल व्याध मनते खै नसे। जिसका सातिन कृपा तारी सा संग जपना मुरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जसरवन। निर्गुणाप सरगुण पियो ही कलातार जिन सगली मोही। अपने चत प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध कै संग। रच रचनाय अपनी कल तारी अनिक बार नानक बलिहारी। श्लोक

आदि संत जना मिलकर विचार एक सिमर नाम आधार और उपाप समीत विसार हो चरण कमल हृदय में उरतारू कर्ण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवथ एहो तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माही सर्व रोग नानक मिट जाहि जिस तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाछ मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनिक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अब कद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक धर गय परवान मन प्रभु दो हर कह नाई दाद स्थावता बैठाए ताको बिघन न लागे कोई जा कह हृदय वसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाऊ भव बिन सह पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगा तित कर जाए विषय विनाशी कौ नान काटी जम्फासी तत् विचार कहे जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यों रतन जन्म का हुए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनिक उपाव न छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चाल स्थिरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कवन सनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ सवारी झूठा डंभ झूठ पासारी जिंदी तिस बुझे न बिगाना न विसार नानक पछताना गुर की मातू लेहे आने भगत बिना बह डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विक जाहे आप जपू अवरा नाम जपावो सुनत कैत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाय नानु गुण गाओ त्रियुत्र समैल बिन सजाए हो मैं विक फैल ओहे अचिंत बसै सुख नालु सास ग्रह सर नाम संभालु चार सियान सगली मना सास सुन पावै सच तना हर पूंजी संच करो विहार यहाँ सुख दर गै जयकार सर निरंतर एको देखो नानक जाके मस्त कलेक एको जाप एको साला एक सिमर एको मन आहे किसके गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूरे हो प्रव्याप अनिक विस्तार एक दे भय करात प्राचित कहे मंत्र निरंतर एक प्रव्रता गुरु प्रसाद नानक इक जाता श्लोक विरत विरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो साथ साथ प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल ज्यों लागे प्रीत भगत करूं प्रभ की नित नीत एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्टमा सुख होए अरस पावे बिरला कोई जिन चाख्या से जन तृप्तानी पूर्ण पुरख नहीं डोला नहीं सुपार परे प्रेम रस रंग पूजे चाव साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रकाश अंदिन विलाग बड़भागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सदगुरते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक जन भया जन मरण दुख प्रम गया इच पुन्नी सरदा सा पूरी रव रया सत्संग हजूरी जिसका सातिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न भान सो क्यों बिसरै जे किया जान सो क्यों बिसरै जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे गन मैरा कै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिकसरै जे बिकते काटे जन्म जन्म का टूटा गाढ है गुरु पूरे तत् है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एक आमान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो हवरै नाम जपावो भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुखा होवत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुहाओ
नित्रोपेक दर्शुक हुए मन विकसय सा चरण तोय भग जना कह मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बदी जय कर मया गुरु प्रसाद नाम जप लया था कृपमा कही न जाय नानक रहा सर्व समाय प्रभु संदीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद गुरु कारण करतार भग जना के प्राण आधार जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत भाए लावे मनहीत हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निम करके गुण गायन करा भोग बढ़े आई हर के नाम की कथा मन पाई वो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सात संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सर्व गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब कार्यो कछ न दृष्टिता पाप उन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरुद्ध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सो कहो किसे व्यापत जब अपन आपा पार ब्रह्म तम का किसूवत भरम अपन केला वर्ती जाना न करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब अन नरगम पार तब नरक सुर को कौन उतारू जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जो तरह तब कवन निडर कवन कत डरे अपन चल तब करने हार नानक ठाकुर गम पार अविनाशी सुख अपना सुन तय जन्म मरण को कहा बिना सुन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की तास कहो किस होए जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गाते तब कौन छुट्टे कौन बंदर बाधे अपन आप आपी चर जा नानक अपन रूप आपी ऊपर जा यह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत को कीश जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसे भूख कवन तृप्तावे कर्ण करावन करने हारू नान करते का नाही सुमारू जब अपनी शुभ अपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुत पाई जय सर्व कलाया पै परवीन तय वेद कतिव कहा कोचीन जब अपन आप पुर धारै तू सगन सगन कहा विचार है जय अपन ऊचापन अपनेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिय चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानु आप जया छल छेद भेद समाया वहां किसे व्यापत माया पसकुआ पया देश त्यो गुण का नाही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपना पापति हारा तय कौन कतय कौन सुन न हारा बहु बेअंत उचते ऊंचा नानका पसकुआ पह पहुंचा जया पृथ्वी पर पंच कार त्यो गुण में किन्नो विस्तार पाप उनत पई कहावत को नर को सुर बंशावताल जाल माया जंजाल हो मैं मोह भरम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बखियान आपन खेला कर दिख खेल संकोच है तू नानक कह जय अभिगत भगत है आप जय पसरै पासार संत प्रताप दुह पाक आया पे तनी उनकी शोभा उनहु बनी आप कौत करै आनंद चूज आप रस भोगन निर्जोग जिस पावै तिसे अपना इलावै जिस पावै तिस खेल खिलावै बेसुमार तहा गंते अतुलै ज्यों

सुस्पति संत संगंत्र प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक घट माही अनिक रंग नाना दृष्टा ही नाव निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत है नाद कह न जाई चर विस्मा तिन देखिया सब दिखाई नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत धरण माही आकाश पयालु सर्वलो पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दै दिसे समाहे तिस्ते पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख ससी असु नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप डोल न कब हूं डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाई है गुण है अमूल सर्व ज्योत मैं जा की ज्योत

संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने सब बचन, सर्वव्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिस की ये रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभु जाने, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभु ते सगली उत्पत, तिस पावै ता करे विस्तार, तिस पावै ता एकंकार, अनिकला लखी नह जाए, जिस पावै तिस लय मिलाए, कवन निकट

गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध सत्संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जा कै मस्त कर्म प्रपाई, साध सर नानक ते आई, जिस मन बसै सुनै लाई परीत, तिस जन आवै हर प्रवचीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ दे तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहि समानी, दुख रोग बिनसे पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म, सब ते उच्चता की शोभा बनी, नानक के गुण नाम सुखमनि, सब ते उच्चता की शोभा बनी, नानक के गुण नाम सुखमनि, सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख होहे तां इक ना चलै नाल केव सचियारा होइयै केव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईया है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईया है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जानै निसाण गावै को गुण वडियाइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगां जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आखै मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मोह के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक इवै जानिया सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावियै गुणी निधान गावियै सुनियै मन रखियै पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौं जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जेतिस पावा विण पाणे के नाए करी जेति सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे तेहा कोए ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनाए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनाए धरत धवल आकाश सुनाए दीप लो पाताल सुनाए पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनाए दुख पाप का नास सुनाए ईसर बर्मा इंद सुनाए मुख सालाहन मंद
सुनाए जुग जुगत तन भेद, सुनाए शास्त सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नाश, सुनाए सात संतोख ज्ञान, सुनाए अठ सठ का इसनान, सुनाए पढ़ पढ़ पावै मान, सुनाए लागै सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नाश, सुनाए सारा गुणा की गाह, सुनाए सेख पीर पातशाह, सुनाए अंधे पावह राह, सुनाए हाथ होवै असगाह, नानक भगता सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मोह चोटा न खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन है पावह मुख द्वार, मन है परवार साधार, मन तर तारी गुर सिखो, मन नानक पवह ना पेखो, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान, पंचा सो है दर राजान, पंचा का गुर एक प्यान, जे को कहे करे विचार, करते कह करण नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तवलै उपर केता पार, धरती होर पर होर होर, तिस ते पार तलै कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया वुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुध पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े यार कूड़े फेराहे, असंख मलेश माल पाखो खाहे, असंख

न पाया पंडती जे हुवै लेख पुराण, वखत न पायो का दिया जे लिखन लेख पुराण। थित वार ना जोगी जाने, रुत माहु ना कोई, जा करता सिर ठीक औ साजे आपे जाने सोई। केव कर आखा केव सालाही, क्यों वरनी केव जाना, नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवै नानक जे को आपौ जाणै, अगै गया ना सोहै। पातला पाताल लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात। सहस अठारह कहन कतेबा असुलु एक तात। लेखा होए ता लिखिए, लिखै होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। सालाही सालाही एती सुरत ना पाईया, नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानिए। समुंद साह सुलतान, गिरहा सेती माल तन, कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मन होना विसरै है। अंत न सिफती कहन ना अंत, अंत ना करना देन ना अंत, अंत ना वेखण सुनण ना अंत, अंत ना जाप।

एहो अंत न जाने कोए बहुता कही है बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाउ ऊंचे उपर ऊंचा नाउ ए वड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जे वड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता करम लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए किते मंगै जोद अपार कितिया गणत नहीं विचार किते खप तुटै वेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे कितिया दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार। बंद खलासी पाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाणै जेतिया मोहे खाए आपे जाणै आपे दे आखै है से पे केई के जिसनो बख से सिफत सलाह नानक पात साही पात साह। अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारीए अमुल भंडार अमुल आवै अमुल ले जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या न जाए आख आख रहे ले बलाए। आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्याण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख न सक है के ही के। जे वड भावै ते वड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल वे गाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा किते वावण हारे किते राग परी स्यों कहियन किते गावण हारे। गावै तुहनो पौण पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे गावै चित गुप्त लिख जाण है लिख लिख धर्म विचारे गावै है ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावै है इंद इंदासन बैठे देवते आंदर नाले गावै है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा माश पयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सेई तुद नो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वड्याई

आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी बौ लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीस। एत राहे पत पवड़िया चढ़िया हुए इकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरे पाईए कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुग।

सर्ब ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सो बराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस तुज जब पय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तात काला। मन बांशत फल पावै सोई, दुख नत सह व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो जाहि सुरस ना पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई को काहै। चौपाई संबत सतर सहस पणि जय, अर्ध सहस फुन तीन कहि जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा। सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मात एक ना मान्यो।

दोहरा सगल द्वार कौ शाडक गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार सगल द्वार।

पाई है। हुक्म मने हो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी, कहे नानक सुनो संतो हो कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने, तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटहौ जिन मोह मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले। साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ, ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरै नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। आगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जान है। जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणाए, आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया। कहे नानक तू सदा आगम है तेरा अंत न पाया। सुर नर मुन जान अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा की नी सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय एक वेख पर सुन आया। लाभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया, कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली चाला निराली, भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। लभ लोभ अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्या हो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगतां जुग जुग निराली। ज्यों तू चलाहे तिव चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाहे तिवै चलै जिन्ना मार्ग पावहे, कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावहे। जिसनो कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे, कहे नानक सच्चे साहेब ज्यों पावै तिवै चलावहे। एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया। एहो तिन कै मन वसया जिन तुर हो लिखया आया। एक फिर है कनेरे कर है गल्ला गल्ली किने ना पाया, कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों, पवित संगत सबाईया। कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया, कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै विण सहजै, सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए। सहस जियो मलीन है कित संजम धोता जाए, मन तो वहो शब्द लागहो हर सिंह रहो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै इस साहिब जाए। जियो मैले बारों निर्मल, बारहो निर्मल जियो तमैले तिने जन्म जीवे हारिया। ए तिशना वड्डा रोग लगा मरण मनोह विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है ज्यो बेतालिया। कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिने जन्म जीवे हारिया। जियो हो निर्मल बारो हो निर्मल, बारो ता निर्मल जियो हो निर्मल। सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुचे नाही, मन सा सच समाणी। जानम रतन जिने खटिया भले से वण जारे, कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले। गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मा समाले, आप छड सदा रहै परणै गुर बिन आवर न जाने कोए। कहे नानक सुनो संतो हो सो सिख सन मुख होए।
ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਬਬੇ ਕੀਆਂ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ

जपिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हारो रंग जपे हो सारंग पाणी कह नानक सदा गावहो एह सची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पै रवाणी कह नानक सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सचे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव साकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए आप वेखाए गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवे मुकत शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक सस्यों ले वलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार न जानी ततै सार न जानी गुरु बाजहो ततै सार न जानी तिह गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रैन विहानी गुर किरपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया बोलै अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु आन दिन हर लेव लागै जागत रैन विहानी माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनहो क्यों विसारी है ए वडदाता जे अगन मैं आहार पहुंचावे ओस नो के हो पोहे न सकी जिस नाओ अपने लिव लावे अपने लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानक ए वडदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जे ही करता खेल रचाया जात इस भाणा ता जमया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसे विटहो रहे लोक वेल लाए ऐसा सात गुर जे मिलै तिसनो सिर सौंपिया विचों आप जाए जिस दा जियो तिस मिल रहा हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए हर रास मेरी मन बण जारा हर रास मेरी मन बण जारा सतगुरु ते रास जानी हर हर नित जपे हो जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बण जारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीऐ हर रस बहुड़ न तृष्णा लागे आए एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापय गुर चरण लागे दिन सभागे अपना पिर जापय
अनहत बाणी गुरु शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रभु आप मिलिया, करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सत गुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर, तुम मैं ज्योत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई,

0: महल पहल के लिखे टुंडेस राजे की दिनी श्लोक महला पहला। बलिहार गुरु अपने देवार सवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा।
1: जिसो चंदा उगवे सूरज चढ़ जा ते जानन पुनिया
2: गुर बिन कोर अंधार महला पहला।
3: नानक गुरु ना चेतनी मना अपने सुचेत छुट्टी तिलबुआर जूं सुने अंदर खेत खेत अंदर छुट्टिया कहो नानक सौ नहा। पली है फुली है बपुड़े पीतन विच सुहा पोड़िया

तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना अखी तगना जेवा तगना अखी वे तगा पिवत वटतागी अवरा कत।

दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ

दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हौं करी वखियान। बेसमार अथाह अगंत अतुल ज्यों बला वह त्यों नानक दास बोले। वाहिगुरु जी कनासरी महला पहला जियो तपत है बारो बार तप तप खपहे बहुत बेकार जय तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। जियो तपत है बारो बार तप तप खपहे बहुत बेकार जय तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी विल लाए। बहुता बोलन चखण होए विण बोले जाने सब सोए। रहा जिन कन कीते अखी नाक जिन जेवा दिती बोले तात जिन

जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कारख दागा दाग दाग दोग मोहे चलिया लाए दरगह बैसण नाही जाए करम मिले आखण तेरा नाम जित लग तरणा होर नहीं था जे को डूबे फिर होवै सार नानक साचा सर्वदा सार जित कर्म मिले आखण तेरा नाम जित लग तरणा होर नहीं था

जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाईऐ, रैन दिनस कर जोड़ हर हर त्याईऐ। नानक का प्रभ सोए जिस

खीन भय सब तस्करा, गुरमुख जन जागै रहाओ, बुद्ध गरीबी खर्च लहू, हौ मैं बिख जारहू। साचा हट पूरा सौदा, वखर नाम वापारहू, जियो पिंड धन अर्पया, से पतवंते आपनड़े प्रभ भाणिया, नित केल करंते दुर्मत मद जो पीवते, बिखली पत कमली राम रसायन जो रते, नानक सच अमली। आसा महला पंजवां।

जीवहुं साधु पाहु कर तौ निध हर पावौ सगली दासी ठाकुर है सब कहती मेरा जिसे सिगारे नानका।

हम छूटे अब उनाते कोई हम ते छूटे रहा मेरा तेरा जानता तब ही ते बंधा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल।

चितवों चितव सर्व सुख पावों, आगे भावों के न भावों। एक दातार सगल है जाचक, दूसर कह पै जावो। हौ मांगो आन ल जावो, सगल छत्रपत एको ठाकुर। कौन समसर लावो रहाओ, ऊठों बैसो रह पे ना साको। दर्शन खोज खुजावो, ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन।

तीन उरतारी, श्रवणी कथा नैन दर्श पेखो, मस्तक गुर चरनारी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा घर दसवां महला पंजवां, जिसनो तू अस्थिर कर मन है, ते पाहुन दो दाहा पुत्र।

रहाउ। गंधन वैन सुनहै उर्जा वह नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत उमाहू बूझी उल्टाया। पर तन पर तन परति निंदा अखाद खाहे हर काया, साच धर्म स्यो रुच नहीं आवे सत सुनत छोहाया। दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हर नाया, नानक आहे शरण प्रभ आयु राख लाज अपनाया। आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाए मुह माया कर बाधे, जह जानो सोचीत न आवे अहंग बुद्ध भय आंधे। मन बैरागी क्यों न अराधे, काच कोठरी माहे तू बसता संग सगल बिखे की व्याधे। रहाओ मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पल खिन छीजे अरजाधे। जैसे मिथ्या साध लुभाए झूठ तंद दुर्गा दे, काम क्रोध अर लोभ मोह ए इंद्री रस।

दीन दुख भंजन, कहो गुरमिल सब सुख लाधे, कहो नानक दिन रैन तियावो, मार काढ़ी सगल उपाधे, इउं जप्यो भाई पुरख बिधाते, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा आसा महला पंजवां। निमक

चित चित लागे, क्या को करे पुरानी, बख्श लहु पार ब्रह्म स्वामी, नानक सद कुर्बानी। आसा महला पंजवां अपने

जह जह काज किरत सेवकी, तहा तहा उठता वै सेवक को निकटी हुए दिखावै। जो जो कह ठाकुर पह सेवक, तत्काल हुए आवै रहाओ। ते सेवक है हों बलिहारी, जो अपने प्रभ भावै तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसन आवै। आसा घर ग्यारवां महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नटुआ भेख दिखावै बहुबिद, जैसा नटुआ भेख दिखावै बहुबिद, जैसा है ओह तैसा रे। अनिक जोन भ्रम्यो भ्रम पीतर, सुख है नाही पर वे सारे। साजन संत हमारे मीता, बिन हर हर अनीता रे। साध संग मिल।

हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा, रैन दिन सुतिस गावो रे, खिन मैं थापु थापन हारा, तिस ते पुजै डरावो रे रहाओ। जब देखूं प्रभ अपना स्वामी, तो अवरह चीत न पावो रे, नानक दास प्रभ आप पहराया, भ्रम पौ मेट लिखावो रे। आसा महला पंजवा, चार बरन चौहा के मर्दन, खट दर्शन कर तली रे, सुंदर सुगर स्वरूप सियाने, पंचो ही मुहि छली रे।

धन सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोई। एक टेक आधार इको, एक का मन जोर, नानक जपिए मिल साध संगत।

आठ लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म इक रंग हर को नाम जपिए नीत सास सास ध्याए सो प्रभ।

बेनती कर दें आप जी दे चरणा च। कलगी वाले धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिथे देग देग ते धनी हन, सरबंस दानी हन, खालसा पंथ के सृजन हार हन, उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बहुत वड्डे संगीतकार भी हैं। सत्संग बोलो श्री दास ने आरंभता की धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बचना बिन करतार न किरतम मानो राग कल्याण पातशाही दसवीं जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 31 राग सिंगल हन, 31 राग ही मिश्रित हन, 62 राग। एडा वड्डा खजाना उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 177 राग गाए ने, 177। सात संगत बोलो श्री इदी परचोल 1990 दे विच शुरू होई सी और इन्हों 2 साल लगे सन लुधियाने विच। दास उदे विच शामल सी। ए बहुत वड्डी देन है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, बहुत वड्डी देन है सात संगत। जे असी उस देन नू संभाल सकीए शायद साडे पुरब मनाए सफल हो जान, इत्थे आउणा सफल हो जाए। जिस मार्ग ते जिस रस्ते ते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू तोरना चाहिया उस रस्ते ते किते असी भी तुर पईए ते शायद इस जीवन विच इस लाइफ विच ऐसी क्रांति आ जाए। क्रांति ए उही क्रांति ते सी सतगुरु बेहर करन बख्शिश करन। सरबत दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद।